ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अमरीका और चीन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली सरबराही मुलाकात से कबल मस्नूई जहानत AI से मुतल्लिका वाकयात पर चीन के साथ एक नोटिफिकेशन मैकेनिज्म की तजवीज़ दी है। बेसेंट ने न्यूयॉर्क में चीन के नायब वजीर आजम हा लीफिंग से इतवार के रोज मुलाकात के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने कहा कि दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जुमेरात के रोज वाशिंगटन में सरबराही मुलाकात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर AI और तजारत पर तबादला ख्याल किया। बेसेंट ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फरीक ने AI से मुतल्लिका ऐसे वाकयात के लिए अमरीका चीन AI मकालमे की तजवीज़ पेश की जो कौमी सलामती को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो AI ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की हर तरफ बढ़ना बहुत अहम है। माफ कीजिएगा, उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो AI ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की तरफ बढ़ना बहुत अहम है। जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के आला सफारतकारों ने शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अपने अज़्म का इरादा किया है। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून ने पीर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास जारी हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि तीनों ममालिक अमली तौर पर मिलकर काम जारी रखेंगे, क्योंकि उनका सेफरीकी तावुन हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने बैन अलाक़वामी आफात से मुतालिक इमदादी कोशिशों और जनूब मशरक़ी एशिया में सरहद पार मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ इकदामात में तावुन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। तीनों ममालिक ने अगली नस्ल के जौहरी रिएक्टर यानी मेयारी रिएक्टर को हिंद बहरुल काहिल और दीगर खित्तों को भेजने के मंसूबे को तेज़ करने के लिए तआवुन का भी इरादा किया। शुमाली कोरिया के हवाले से मज़कूरा ओहदेदारों ने अगवा के मामलात के फौरी हल के साथ साथ अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। उन्होंने शुमाली कोरिया की साइबर से मुतालिक सरगर्मियों से निमटने के लिए सेफरीकी तआवुन की भी तौसीख की, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तरक्की में इस्तेमाल होती है। चीन को मद्देनज़र रखते हुए तीनों ओहदेदारों ने खित्ते की सूरतेहाल से निमटने के तरीकों पर बातचीत की, जहां ताकत या दबाव के जरिए मुसलमा हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशें देखी जा रही हैं। उन्होंने अपनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जापानी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता माह के तबाहकुन अचानक आने वाले सैलाबी रेले से मुतासरा नेपाल की बहाली के लिए तवील मुद्दत तक मदद जारी रखने के टोक्यो के इरादे का इजहार किया है। मोतेगी तोशिमित्सु ने पीर को न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर नेपाल के वजीर खारजा शिसर खनाल से मुलाकात के दौरान उन्हें इस मंसूबे से आगाह किया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए जो भी मुमकिन हो करने का इरादा रखता है, जिसमें हंगामी इकदामात के लिए इमदाद के साथ साथ दरमियानी और तवील मुद्दती तआवुन शामिल है। मोतेगी ने मुतअद्दिद इकदामात पर मुसलसल अमल दरामद के जरिए नेपाल की कौमी तामीर की कोशिशों के लिए भी मदद का वादा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की और घरेलू सनतों को फरोग देने का जिक्र किया। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।